0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

शिवसुवन शडासन भ्राता गौरी ललन विश्व विख्यात सिद्धि सिद्धि वर्च वर सुधारे भूषक वाहन सोहत द्वारे त्रिगणे त्रिगणे।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

हरे कृष्णा। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो शारदा।
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
11: थैंक यू सो मच सर।
10: कैसा फील कर रहे हैं, काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
11: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है, टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
10: ओह ग्रेट,
11: बिकॉज वहाँ पे आई यूज टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो शार्दन्स की।
10: एक्सीलेंट,
11: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
10: मुझे यूं कहें कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है। मतलब आपने वहाँ अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
11: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस।
10: ग्रेट
11: एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम
10: इट
11: बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है. अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे अपना सीखा है वो माई टीचर्स हैव बीन माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट. इनफैक्ट ऑल माई टीचर्स स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए.
10: ग्रेट. तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
11: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था. उनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी. इट यूज्ड टू बी मोर लाइक सिटिंग टॉकिंग टू हिम वर्किंग विद हिम. वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ एंड लाइक वहाँ से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी. टू एक इनफॉर्मल एटमोसफियर जो क्लासरूम में होता है तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था.
10: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती है?
11: हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट उनके साथ. पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि वॉट इज द केपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो.
10: अच्छा प्रेमदा, मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती. जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
11: सब बहुत काम आया. इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदन्स का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 ईयर्स आई वाज द एडिटर हियर. मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था एंड आई रोट स्क्रिप्ट फॉर टीवी शोज, नॉन फिक्शन टीवी शोज. एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
10: वो वहाँ काम आया,
11: वो बहुत वहाँ काम आया. इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर.
10: एक्सीलेंट. ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं. इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है. तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
11: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन
10: राइट
11: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर. इट रियली हेल्प्स एंड यू कैन फॉल बैक टू योर फाउंडेशन एनी टाइम. वापस आके यू कैन रीलर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज टीचर्स. दे आर दैट ओपन टू यू एज अ स्टूडेंट. एज अ पास आउट, आई हैव पास्ड आउट इन 2016, बट टू स्टार्ट लर्निंग, बट टू कम बैक टू द रूट्स एंड जस्ट टॉक टू द टीचर्स एंड लर्न, आई थिंक दिस इज द थिंग. क्योंकि लर्निंग, आई फील देयर इज नो एज टू
10: बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती. जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं. और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है. सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप हैं प्रेमवदा. तो प्रेमवदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही. ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आपनी तो स्टूडेंट है. प्रेमवदा, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM. मैं हूँ गगन आपके साथ. मेरे साथ हैं प्रेमवदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं. सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं। BGMC का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ 1 ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय 1 ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डिवेलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही,
1: yes.
0: वो कैसी जर्नी रही वहाँ, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 मंथ्स इनटू माय कोर्स, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज, वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना इतनी नॉलेज वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 टेक में हमने पूरी शूट करी है, एंड इट इज कॉल्ड कोल मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहाँ पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपके?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजलिस। इंडिया में भी 2 फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एंड हैज वन अवार्ड।
0: ओह ग्रेट, बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में भी, दिल्ली NCR में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी में भी अभी KFF कुछ फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ, नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल हैं और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है। तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? 2 बातें।
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है, मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माय एम वाज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। इंडिया का तो लाइक बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग अ स्टूडेंट हियर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पस वाज दैट. अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको वो करेंगे,
0: एक्सप्लोर करेंगे.
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे,
0: राइट,
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे, वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है.
0: बिल्कुल सही कहा.
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो, बट व्हेन यू स्टेप इनटू दैट फिल्म सेट और व्हेन यू स्टेप इनटू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड, वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी. इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा.
0: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पास आउट हो रहे हैं. अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और. उस समय बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं कि नो डाउट, जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीज़ें काम आई. कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को ख़राब कर रहे होते हैं, 3 साल या 4 साल वट एवर जो भी है, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए. एक तो धैर्य की कमी होती है, दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते. अगर टीचर, जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते, फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे अगर वो सारी चीजें, यूं कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, तमीज की बात कर रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं, सुनने की क्षमता है, सीखना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा. और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी

0: एक्चुअली सर आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट हम लोगों को हर चीज़ के लिए वी वर लाइक अपने से वो करते थे
1: जी जी
0: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड
1: रियली नाइस सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं समझ रहे हैं इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो धैर्य पेशेंस होना बहुत जरूरी है पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा परिणाम जो आएगा वो सुखद आएगा सो प्रेमवदा मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई बहुत अच्छा लगा और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ और सब कुछ अच्छा हो बेहतर हो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: थैंक यू सो मच
1: सो लिसनर्स आप थे हमारे साथ प्रेमवदा जो कि एक प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं राइटर हैं ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8fm मैं हूं गगन मुझे दीजिए अनुमति जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है इसे प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की जरूरत टाटा बाय बाय एंड टेक केयर
2: प्ले क्या बात है

जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, हम हैं आशा और आज हम आपको बताएंगे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे को माँ की त्वचा के संपर्क में रखें। बच्चे को माँ के शरीर से लगाकर गर्मी देना बहुत फायदेमंद होता है। जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध जरूर पिलाएं। नवजात का वजन जरूर कराएं ताकि नवजात के वजन की जानकारी मिल सके। नवजात को जन्म के कम 7 दिन बाद नहलाएं। शिशु को हमेशा साफ कपड़े से ही पोछें। नाभि नाल को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए। नाभि नाल पर तेल, पाउडर, राख, गोबर, हल्दी इत्यादि बिल्कुल न लगाएं। इससे इन्फेक्शन लगने से शिशु बीमार पड़ सकता है। बच्चे को सूखे एवं स्वच्छ कपड़े में लपेट कर रखें। माँ किसी कारण से बच्चे को अगर सीने से लगाकर ना रख सके तो घर का कोई भी और सदस्य उसको सीने से लगा सकता है। बच्चे को रात दिन 24 घंटे में 8 से 10 बार दूध पिलाएं। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दें। माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं। बच्चे के लिए माँ का दूध ही परिपूर्ण आहार है। इससे पोषण संबंधी सभी जरूरतें पूरी होती हैं और बच्चा बीमारियों और संक्रमण से बचा रहता है। माँ और परिवार के सदस्य शिशु को छूने से पहले हर बार अपने हाथ साबुन और पानी से अवश्य धोएं। याद रहे, बच्चे का स्वास्थ्य और विकास आपके हाथों में है। अगर जो कि थोड़ी सी भी लापरवाही बढ़ सकती है बच्चे के स्वास्थ्य पर भारी, क्योंकि सही तरीके से की गई सही देखभाल से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा, गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: बीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी न हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:21 हो चुके हैं, 3 तारीख है और क्या है आसपास हमारे खास उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि मौसम का जो मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है जिसका फर्क हम सब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।

कर दिया है। तो जिस तरीके से ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके पीछे सोचना बनता है। स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। गरीब लोगों के लिए बेहद जानलेवा साबित होगी ये रिपोर्ट्स। तो इसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि वैज्ञानिक का आंकलन ये है कि कंक्रीट के ढांचे दिन भर सूरज की रोशनी और गर्मी को सोखते हैं, रात में इसे धीरे धीरे हवा में छोड़ते हैं। जब ये अंतर कम होने लगता है तो इसका मतलब है कि शहर 24 घंटे एक भट्टी की तरह तप रहा है, जिसमें डामर की सड़कें और कंक्रीट की इमारतें रात में भी ठंडी नहीं हो पा रही हैं। लगातार गर्म होती रातें गरीब और संवेदनशील लोगों के लिए बन रही हैं जानलेवा चुनौती। तो कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पेड़ पौधे जरूर लगाइए, एक पौधा माँ के नाम जरूर लगाइए, और यकीनन आप उस पेड़ के नीचे सुस्ताना चाहते हैं जहाँ छांव हो, वहाँ आप गाड़ी को पार करना चाहते हैं जहाँ छांव हो, तो आप भी तो कुछ दीजिए ना समाज को। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुरुषात 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:31 हो चुके हैं। हमारे आसपास के खास उसके बारे में जान लेते हैं। एक अच्छी खबर के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अच्छी खबर ये है कि जिस तरीके से विराट कोहली ने जो आईपीएल के मैचेस खेले उसके बाद, मतलब उनके लिए अच्छी खबर, और जब हम उस दृश्य को देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक सुकून मिलता है। जब आपकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जब आपके काम बन जाते हैं, तो आप वृंदावन की ओर रुख करते हैं, और यही चीजें देखने को मिल रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि विरुष्का यानी कि अनुष्का शर्मा प्लस विराट कोहली वृंदावन पहुंचे और वहां पर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए वो पहुंचे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ईश्वर का, खुदा का, पिता परमेश्वर का, बड़े बुजुर्गों का ध्यान करते हुए हम सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती, और खुशियां बांटने से दोगुनी होती चली जाती है, है ना। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप अपनी फैमिली के बीच में जाते हैं, आप पार्टी करते हैं, दावत करते हैं, वगैरह वगैरह। तो खैर, कोशिश करते जाइए, निश्चित तौर पर आपके सपने पूरे हों, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का जो सूर्य है, जो उदय होता हुआ नजर आ रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं कि हमें भी बॉडी बनानी है, हमें भी बहुत अच्छा करना है, और बड़े बड़े लोगों का वो रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में छा ही गए। और जिस तरीके से इस समय जो चर्चाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ चहुओं वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी का ही जिक्र हो रहा है। चलिए, वैभव को आने वाले समय के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। वो कहते हैं कि स्टार बनने के बाद थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है। चलिए, इस स्टार को बनने के लिए लोग तरसते हैं, मेहनत करते हैं। इस स्टार वाला जो एक फील है ना, इसको जीते रहिए वैभव। फ्रॉम द मूवी राजनीति, मुझसे मोरा पिया बोले ना, है ना, मोरा पिया मुझसे बोले ना, मोरा पिया, बहुत ही खूबसूरत गाना। सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

क्या बात इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल। खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:44 हो चुके हैं। 3 तारीख है, जून का महीना शुरू हो चुका है। हाँ, जून के महीने में 2 जून की भागदौड़, मतलब 2 जून की रोटी, मतलब वही भागदौड़ रोटी के लिए, मतलब एक डायलॉग तो बन जाता है ना, 2 जून की रोटी के लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं। हाँ चलिए, भाग दौड़ करते रहिए, लेकिन ऐसे मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हारे थके जब आप अपने घर पहुँचते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में, मतलब अब तो एसी चौंर मिल ही जाते हैं, लेकिन एसी नहीं है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप अपने आप को ऐसा समझिए। मुझे लगता है कि अगर एसी नहीं है तो ठीक है, हाँ, क्योंकि प्राकृतिक हवाएं आप ले रहे हैं, लेकिन जो लोग एसी के आदि हो जाते हैं, हाँ, उनको सोचना समझना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ पर इसका फर्क तो पड़ता है। हाँ, जैसे कि जिनके क्या बोलते हैं, जोड़ों में, हाँ, घुटनों में दर्द की समस्या है, वो लोग अवॉइड, हाँ, अवॉइड करें। शाबाश, अगर तुम ना होते तो अटक ही जाता मैं। चलिए, लेकिन जब हादसे होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। दिल्ली NCR में, गाज़ियाबाद में, अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी ही एसी की घटना हमने देखी जिसकी वजह से आग लग गई। जान माल जनधन की हानि होती है ना, तो इस पर काबू कैसे पाया जाए? अगर आपको लगता है कि आपका एसी ऑन नहीं हो रहा है, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बार बार या यूं कहें कि ज़बरदस्ती आप उसको ऑन करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा आप तुरंत एक्सपर्ट को आप बुला लें, और अगर कोई बहुत बड़ी गलती है तो उसको आप बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि मैकेनिक का इंतज़ार करें, या अगर कट कर सकते हैं उस लाइन को तो वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आग लगने से तो बेहतर है कि आप सावधानी बरतें। हम चाहते हैं कि कोई जनधन हानि ना हो, सो प्लीज़ अगर आप वातावरण के बीच में जा सकें तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। प्याऊ ज़रूर लगाएगा, क्योंकि एक दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि किसी ने आपके लिए एक पेड़ लगाया जहां आप सुस्ताते हैं, जहां आप अपनी गाड़ी को पार करते हैं। समाज के हित में भी कुछ करना होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। एक क्या खास होने जा रहा है शारदा यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें लगातार मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूं। तो मेरा फर्ज बनता है कि शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में क्या खास हो रहा है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। खास बात निकल कर ये सामने आ रही है कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट वन डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन वो कर रहा है और AI मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ये कुछ इस तरीके से टॉपिक्स हैं। प्लेटफॉर्म गवर्नेंस, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल लेबर इन इंडिया, ये जो डेट है 12 जून है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी जो फीस है मान ली ओनली 250 रुपीज़ है इसका। यू कहें कि बस आप स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए जो नंबर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा 8851102300। एक बार फिर से बता देता हूं 88511023000। हाँ, 0000 हिंदी में मतलब 2 बार 0। अच्छा, दूसरा नंबर है 9785014998। रिपीट कर देते हैं 9785014998। सिफर वाला तुमने सही बोला, मैं सोच रहा था कि कहीं शून्य तो नहीं, जीरो तो नहीं बोलोगे। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक, म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसीरोलियो, सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी, लिरिक्स वायु श्रीवास्तव।

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

ओरिजिनल क्रेडिट्स एल्बम हीरा पन्ना, सिंगर किशोर कुमार, लता मंगेशकर, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीपशिखा रैना, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर। पन्ना

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है।
1: हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर यह एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है।
2: सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं, फाइलेरिया के कारण स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार MDA अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा निशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे, उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल ये दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया।

0: सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है रेडियो ओपीडी। इसी के अंतर्गत हम एक खास श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, सेहत सही लाभ कई। इसी श्रृंखला के अगले भाग में आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, बहुत ही खास विषय हम लेकर आए हैं आपके बीच। हम बात करेंगे वर्तमान मौसम के विषय में, बारिश के विषय में, और इसी से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। अब ये सारी बातें मैं अकेला नहीं करूंगा, मेरे साथ होती हैं हमारी हम सब की टीकन भाभी। तो टीकन भाभी, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी, और कैसे हैं मेरे सभी श्रोता। गगन जी, वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा, कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर तन मन स्वस्थ है तो धन की भी बचत होती ही रहेगी। आरजे जी, मैंने तो सेहतिया जी से कह दिया कि जी तुम तो सिर्फ मुश्किल मुश्किल बातें करते हो, पर मैं आज जाऊंगी और स्टेशन पर सबको अपनी बात एकदम विस्तार से समझाऊंगी।
0: क्या बात है भाभी, आपने तो हमारा मन जीत ही लिया। ये आप ही का स्टेशन है, जब चाहे तब आप आइए। वैसे सेहतिया जी ने तो काफी काम की बातें बताई थी पिछले एपिसोड में, खैर चलिए आप ही बताइए आखिर क्या बताना चाहती हैं इस भाग में।
1: अरे उनकी बात तो सही थी, पर देख रहे हो आप बारिश किस कदर हो रही है और जगह जगह बाढ़ और पानी जमा है, तो इस पानी के जमाव से मच्छर की संख्या भी बढ़ रही है और अनेक मच्छरों के साथ अनेक बीमारियां भी फैल रही हैं। अब आप ही देख लो, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं काला आजार, तो कहीं फाइलेरिया, ये सब निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं।
0: भाई आपने अंग्रेजी में इस बीमारी का नाम बता दिया, लेकिन मेरे श्रोता आम भाषा में इसको समझना चाहते हैं कि आखिर ये किस खेत की मूली, अरे अरे मेरा मतलब ये बीमारी है क्या।
1: अरे निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज यानी उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग। ये उपेक्षित मानी जाती है क्योंकि अन्य बीमारियों की तुलना में इन्हें कम शोध निधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान मिलता है, जबकि ये गंभीर रोग एवं मृत्यु का कारण बनती हैं।
0: तो भाभी चलिए, ये तो सही मौका है और आज हम अपने पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फाइलेरिया की, यानी हाथी पाँव की बीमारी के विषय में।
1: अरे बिल्कुल, एंटीडीज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ऐसी बीमारियां जो अक्सर गरीब और ग्राम

0: ग्रामीण इलाकों में फैलती हैं, जैसे काला आजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया। इनका इलाज और रोकथाम है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग तकलीफ उठाते हैं और कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
1: भाई ये कहावत तो अक्सर हमने सुनी ही है, बसों में लिखा हुआ पढ़ा भी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मनोज वाजपेयी का फाइलेरिया पर एक खास संदेश।
2: नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव।
0: वैसे मैं और सेहतिया जी तो बात करते ही रहते हैं, क्यों ना हम सब अपने श्रोताओं को हमारे साथ जुड़े हमारे डीएमओ साहब की बातें भी बताएं।
1: चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं डीएमओ साहब को, और इनसे बात कर रहे हैं हमारे रेडियो प्रेजेंटर शशि कपूर साहब। तो आइए सुनते हैं।
3: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, और हमारा जो समुदाय है वो जागरूक रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और इसके लिए कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई, और उसी के अंतर्गत हम आपके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम लेके आते हैं जन जागरूकता के लिए। और जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तब तक आप जिंदगी का कोई भी आनंद नहीं उठा पाते, इसलिए स्वास्थ्य का अपना ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मलेरिया के बारे में तो हम सब जानते हैं और अक्सर आपको जानकारी मिलती भी रहती है रेडियो के माध्यम से, लेकिन मलेरिया से मिलता जुलता नाम है एक फाइलेरिया का। तो आज फाइलेरिया के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर श्रुति कृति वर्मा जी, उनसे जानेंगे फाइलेरिया के बारे में। तो डॉक्टर श्रुति कृति जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
4: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: डॉक्टर श्रुति जी, मलेरिया के बारे में तो लोग अक्सर जानते हैं, लेकिन फाइलेरिया के बारे में मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, हम भी इससे परिचित नहीं हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया ये जो बीमारी है क्या है।
4: देखिए, ज़्यादातर फाइलेरिया हमारे क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है, और एक पैरासाइट है आपका वाउचेरिया ब्रोंकाइफाइटिस, वो इसका पैरासाइट है जो ये मच्छर के अंदर होता है। ये जो इन्फेक्टेड मच्छर अगर किसी को बाइट करता है तो उसको फाइलेरिया हो जाता है। शुरू में तो ये नोटिस नहीं हो पाता है, कई सालों के बाद इसके लक्षण निकल के आते हैं। तो इनमें देखा जाता है कि लिम्फ नोड में हमारी स्वेलिंग हो जाती है, उनमें दर्द भी होता है, कई बार पेशेंट को बुखार भी आता है। लिम्फ नोड के अलावा उसके स्क्रोटम में या ब्रेस्ट में इस तरह की उसमें भी सूजन आ जाती है। तो अगर इस तरह के लक्षण किसी को दिखाई पड़ते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके वहाँ पर अपना टेस्ट करा सकता है, और डॉक्टर टेस्ट करेंगे। और इसका उसके बाद में अगर उनको इसका भी नाइट ब्लड सर्वे वगैरह होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में इस तरह के केस अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और ये है कि चूंकि NCR रीजन है और यहाँ पे बाहरी प्रदेशों से और बाहरी अन्य कई जिलों से जो है लोग आते रहते हैं, और जो जिले इनसे पीड़ित हैं अगर वहाँ से कोई व्यक्ति इस तरह का आता है और हमारे पास सूचना प्राप्त होती है, तत्काल हम एक्शन ले करके और सारी हम उसकी रिपोर्ट्स देखते भी हैं और उससे सारी चीज़ें करें, अगर हमें लगता है तो देन हम उसका मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं।
3: तो आपने बताया कि क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, अब बात आती है सावधानी की, तो हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, तो किस तरह की सावधानी हमारे समुदाय के लोग अपनाएं ताकि इन बीमारियों से वो दूर रहें।
4: देखिए, मच्छर कोई भी हो, चाहे वो एडीज हो या एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, बचना तो हमें सबसे ही है, क्योंकि हर देखिए कोई ना कोई मच्छर किसी न किसी पैरासाइट को या वायरस को उसका वाहक है। और तो मेनली सबके उपाय सब कुछ सेम है कि हमें वाटर कहीं पे भी लॉक्ड करके नहीं रखना है। कंटेनर्स अगर कहीं पे भी हैं इस तरह के तो उनको हमेशा हमें खाली करके रखने हैं। कूलर है, फ्रिज है, जहाँ पे भी पानी है, मैंने अभी जो आपकी फ्रिज के पीछे की ट्रे होती है उसमें भी हमें पानी नहीं भरना है। दूसरा ये है कि आप हमेशा नेट का प्रयोग कीजिए, मच्छरदानी लगा के सोइए। और अगर हम चाहें तो कई तरह के ऑइंटमेंट मार्केट्स में आते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ पैरों पे, जो हमारे खुला पार्ट रहता है हमारे हाथों का या पैरों का। तो मेरे लिए ये है कि आप उनको करिए। नीम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, अपने हाथों पे लगा सकते हैं, पैरों में लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हमेशा फुल बाँह के आप अपना कमीज़ है खुद भी पहने और बच्चों को भी फुल स्लीव्स वगैरह पहना के रखें, क्योंकि अभी इस तरह का जो सीज़न है आपका जुलाई ऑनवर्ड्स नवंबर तक, तो ये रहता है कि यहाँ पे मॉस्किटो का थोड़ा डेंसिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम इस तरह के बचाव करते रहेंगे तो नियमित रूप से तो हम मच्छरों से बच सकते हैं।
3: बहुत से लोगों में कुछ मिथ भी है, कुछ लोग समझते हैं कि छुआछूत किया आनुवंशिक बीमारी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: हाँ जी, देखिए ना तो ये आनुवंशिक बीमारी है और ना ये छुआछूत की बीमारी है। सिंपल सी बात है, अगर हमारा क्यूलेक्स बाइट करता है और जिसमें ये पैरासाइट अगर है उस मच्छर में, अगर उस मच्छर ने आपको काट लिया तो निश्चित रूप से फिर आप फाइलेरिया आपको हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह का लगे, और ये कई बार 5-6 साल के बाद में या कई बार 10-12 साल के बाद ये बीमारी डायग्नोस होकर आ पाती है, तो सबसे पहले आप जो भी ट्रीटमेंट आपको मिले, स्पेशली उन जिलों में हमारा जो है ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जहाँ पे आपको डाइएथाइल कार्बामेजाइन और आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल इस तरह के मेडिसिन उसमें दिए जाते हैं, वो प्रोग्राम में दिए जाते हैं कि भाई लोग उसे बहुतायत रूप में खाएं। और समुदाय में जो जहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें एक पूरे सभी लोगों को इस तरह का मेडिसिन खिलाया जाता है ताकि ये कंट्रोल में रहे। तो अगर आपको प्रारंभिक लक्षण उभर के आ रहे हैं, आप सही जगह पे पहुंचते हैं, आपका टेस्ट होता है, फिर आपको जो रिकमेंडेशन आपको मेडिसिन मिलती है उनका सही तरीके से सेवन कीजिए। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, तो इससे बचने का यही सिंपल उपाय है। दूसरा, कोशिश कीजिए कि मच्छर आपको बाइट ही ना कर पाए। हम हमेशा जब इस बात पे जोर देते हैं कि जो मैन और मॉस्किटो जो कॉन्टैक्ट है उसको ख़त्म किया जाए, तो अगर हम देखें मच्छरदानी लगाएंगे, फुल स्लीव्स पहनेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो हम निश्चित रूप से मॉस्किटो से बच सकते हैं।
3: ये जो बीमारी है इसके लक्षण 5 साल बाद, कभी कभी 10 साल बाद इसके दिखाई देते हैं, तो इतने साल बाद अगर पता चलता है तो क्या ये ठीक हो सकती है बीमारी?
4: देखिए, अगर स्टार्टिंग में हमने उस बीमारी को पकड़ लिया, जब लक्षण आपके प्रकट हो गए, तो बिल्कुल ठीक हो सकती है। उसको हमें स्टेज 3 स्टेज 4 तक अगर हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत दिन हो जाता है तब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आज ये बीमारी क्यूरेबल है। अगर हमारा स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर हम उसे वो कर लेते हैं डायग्नोज करके भी, तो अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल जाता है तो निश्चित रूप से ये क्यूरेबल है।
3: आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसी क्या उपाय अपनाएं जिससे कि इस बीमारी से वो बच सकें?
4: देखिए, मॉस्किटो के बाइट का टाइम होता है, जैसे एडीज है आपका दिन में काटता है, आप वर्क प्लेस पे कहीं भी जा रहे हैं वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप घर पे भी हैं तो आपको वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। एनाफिलीज है आपका मॉर्निंग और इवनिंग में रहता है, ऐसे क्यूलेक्स का भी रहता है, क्यूलेक्स भी ज़्यादातर आपको इवनिंग और मॉर्निंग में ही काटता है। तो ऐसे समय पे हम थोड़ा अगर प्रिकॉशन लेंगे, और ख़ास करके जब आपका बरसात के बाद का जो सीज़न स्टार्ट होता है बरसात में, तो फिर वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहने, ऑइंटमेंट लगा लें, बच्चों को भी हम ऑइंटमेंट लगा के रखें, तो हम उससे बच सकते हैं। और ये जान लीजिए, अगर आप अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे, आप अपने घर में सफाई रखेंगे, तो आपको मॉस्किटो इतनी जल्दी आपको बाइट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम इन सब चीज़ों को क्योर लेकर के चलेंगे, और अगर कभी मान लीजिए कहीं से हो भी जाता है, तो आप तुरंत का तुरंत, आपको उसमें देरी नहीं करनी है, आपको अगर पहले दिन बुखार आता है तो आप दूसरे तीसरे दिन ज़रूर आप पहुँचें और अपना टेस्ट करवाएँ।
3: डॉक्टर श्रुति कृति जी, आपने फाइलेरिया के बारे में हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो समुदाय के लोग हैं आपकी जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया, लेकिन अब सुनते हैं जमीनी सच्चाई हमारी आशा दीदी से। दीदी, आप तो घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, आपका अनुभव क्या कहता है?
5: मैं सीता संगनी धनकौर ब्लॉक से। वैसे तो हमारे जिले में फाइलेरिया बीमारी नहीं है, फिर भी हम समुदाय को जागरूक करने के लिए बताते हैं कि फाइलेरिया हाथी पांव एक धागे जैसे परजीवी कृमियों से होने वाला संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, और इसके लक्षणों में जैसे बुखार, सिरदर्द, खुजली, शरीर के अंगों में जैसे हाथ पैर या अंडकोश अत्यधिक सूजन शामिल हैं, अंगों में सूजन, हाथी पांव पैरों या हाथों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है जिससे वह हाथी के पांव की तरह मोटे हो जाते हैं। फाइलेरिया के बचाव के उपाय, मच्छरों से बचाव, जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग करें और मच्छरों के काटने से बचने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें और उचित देखभाल करें। यदि किसी को फाइलेरिया के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: अच्छा टीकन भाभी, फाइलेरिया पर बातें तो बहुत हुई, कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहती हो कि फाइलेरिया के बारे में, या यूं कहें कि विस्तार से अगर हम जाने तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप?
0: फाइलेरिया को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है नाइट ब्लड सर्वे।
1: अरे हाँ हाँ, ये तो मैंने भी कहीं सुना है, मैंने ये एक वर्कशॉप में भी सुना था।
0: अरे हाँ भाई सुनो तो, अब लोग अक्सर पूछते हैं कि ये नाइट ब्लड सर्वे होता क्या है और रात में ही क्यों होता है। तो सुनिए, फाइलेरिया के कृमि को हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो संक्रमित मच्छर के काटने से हमारे खून में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड में दिन में ये छुपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये बड़ी संख्या में खून में सतह पर आ जाते हैं।
1: अच्छा, जब ही स्वास्थ्यकर्मी रात के समय ही सर्वे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रात में ये लोग निकलते हैं सर्वे करने के लिए।
0: हाँ, स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों की उंगली में हल्की सी सुई चुभोकर कुछ बूंद खून निकालते हैं। उस खून को स्लाइड पर रखा जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के खून में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है या नहीं।
1: लेकिन टीकन भाभी, ये सर्वे करना जरूरी क्यों है?
0: देखिए, इससे हमें ये समझ आ जाता है कि गांव या मोहल्ले में बीमारी कितनी फैली हुई है, किन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है और किन जगहों पर बीमारी लगभग खत्म हो रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसी जानकारी के आधार पर तय करता है कि कहां दवा वितरण अभियान MDA को मजबूत करना है, कहां जागरूकता बढ़ानी है और कहां बीमारी खत्म करने की घोषणा की जा सकती है।
1: इसका फायदा क्या है भाई?
0: अगर समय पर बीमारी पकड़ में आ जाए तो दवा देकर उसे आगे फैलने से रोका जा सकता है। इससे गांव के बाकी लोगों की भी सुरक्षा होती है क्योंकि बीमारी का स्रोत कम हो जाता है। लंबे समय में यह सर्वे हमें फाइलेरिया की जड़ खत्म करने में मदद करता है। कहावत है ना कि समस्या को समझ लिया जाए तो उसका हल आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही, जब हमें पता होता है कि बीमारी कहाँ है तभी हम उसे सही तरीके से खत्म कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, और ये भी तो सही है कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, लेकिन समाज में लोग मरीज से दूरी बनाने लगते हैं।
0: बिल्कुल, बीमारी से पीड़ित को सहारे की जरूरत होती है लेकिन लोग दूरी बना लेते हैं। मेरा कहना है मरीज को अपनाइए, उनसे दूरी मत बनाइए।
1: क्या बात है, कितना जोर देकर भाभी आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही। तो दोस्तों, अब वक्त है शपथ लेने का, आइए हम सब मिलकर कहें, यानी कि टीकन भाभी आप भी कहिएगा, हम भी कहेंगे और हमारे श्रोता भी कहेंगे,
0: हम अपने और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी लेंगे, साफ सफाई और मच्छरों से बचाव करेंगे, सरकार की दी हुई दवा जरूर खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: और याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। तब तक के लिए अलविदा और स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई अपने सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM पर। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति और हमारी टीकन भाभी को भी दीजिए अनुमति,
0: और ध्यान रखिए सब अपना।
1: नमस्कार।
6: फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था, हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं। और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है।
7: हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से

0: सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर ये एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है।
1: सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं,
0: फाइलेरिया के कारण
1: स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है।
0: भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार
1: MDA अभियान के दौरान
0: प्रभावित क्षेत्रों में
1: फाइलेरिया से बचाव की दवा निःशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे, उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल ये दवा खाने से
0: आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया।

0: फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है।
1: हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर यह एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं, फाइलेरिया के कारण स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार MDA अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा निशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे, उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल ये दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया।

सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है रेडियो ओपीडी। इसी के अंतर्गत हम एक खास श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, सेहत सही लाभ कई। इसी श्रृंखला के अगले भाग में आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, बहुत ही खास विषय हम लेकर आए हैं आपके बीच। हम बात करेंगे वर्तमान मौसम के विषय में, बारिश के विषय में, और इसी से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में।

0: नहीं है। अब ये सारी बातें मैं अकेला नहीं करूंगा, मेरे साथ होती हैं हमारी हम सब की टीकन भाभी। तो टीकन भाभी, सुनो शारदा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी, और कैसे हैं मेरे सभी श्रोता। गगन जी, वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा, कहते हैं ना स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर तन मन स्वस्थ है तो धन की भी बचत होती ही रहेगी। आरजे जी, मैंने तो सेहतिया जी से कह दिया कि जी तुम तो सिर्फ मुश्किल मुश्किल बातें करते हो, पर मैं आज जाऊंगी और स्टेशन पर सबको अपनी बात एकदम विस्तार से समझाऊंगी।
0: क्या बात है भाभी, आपने तो हमारा मन जीत ही लिया। ये आप ही का स्टेशन है, जब चाहें तब आप आइए। वैसे सेहतिया जी ने तो काफी काम की बातें बताई थी पिछले एपिसोड में। खैर चलिए, आप ही बताइए आखिर क्या बताना चाहती हैं इस भाग में।
1: अरे उनकी बात तो सही थी, पर देख रहे हो आप बारिश किस कदर हो रही है और जगह जगह बाढ़ और पानी जमा है, तो इस पानी के जमाव से मच्छर की संख्या भी बढ़ रही है और अनेक मच्छरों के साथ अनेक बीमारियां भी फैल रही हैं। अब आप ही देख लो, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं काला आजार, तो कहीं फाइलेरिया, ये सब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं।
0: भाई आपने अंग्रेजी में इस बीमारी का नाम बता दिया, लेकिन मेरे श्रोता आम भाषा में इसको समझना चाहते हैं कि आखिर ये किस खेत की मूली, अरे अरे मेरा मतलब ये बीमारी है क्या?
1: अरे निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। यह उपेक्षित मानी जाती है क्योंकि अन्य बीमारियों की तुलना में इन्हें कम शोध निधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान मिलता है, जबकि ये गंभीर रोग एवं मृत्यु का कारण बनती है।
0: तो भाभी चलिए, ये तो सही मौका है और आज हम अपने पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फाइलेरिया की, यानी हाथी पांव की बीमारी के विषय में।
1: अरे बिल्कुल, एंटीडीज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ऐसी बीमारियां जो अक्सर गरीब और ग्रामीण इलाकों में फैलती हैं, जैसे काला आजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया, इनका इलाज और रोकथाम है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग तकलीफ उठाते हैं और कहावत है सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
0: भाई ये कहावत तो अक्सर हमने सुनी ही है, बसों में लिखा हुआ पढ़ा भी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मनोज वाजपेयी का फाइलेरिया पर एक खास संदेश।
2: नमस्कार, सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव।
1: वैसे मैं और सेहतिया जी तो बात करते ही रहते हैं, क्यों ना हम सब अपने श्रोताओं को हमारे साथ जुड़े हमारे डीएमओ साहब की बातें भी बताएं।
0: चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं डीएमओ साहब को, और इनसे बात कर रहे हैं हमारे रेडियो प्रेजेंटर शशि कपूर साहब। तो आइए सुनते हैं।
3: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, और हमारा जो समुदाय है वो जागरूक रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और इसके लिए कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, और उसी के अंतर्गत हम आपके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम लेके आते हैं जन जागरूकता के लिए। और जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तब तक आप जिंदगी का कोई भी आनंद नहीं उठा पाते, इसलिए स्वास्थ्य का अपना ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मलेरिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, और अक्सर आपको जानकारी मिलती भी रहती है रेडियो के माध्यम से, लेकिन मलेरिया से मिलता जुलता नाम है एक फाइलेरिया। तो आज फाइलेरिया के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर श्रुति कृति वर्मा जी, उनसे जानेंगे फाइलेरिया के बारे में। तो डॉक्टर श्रुति कृति जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
4: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: डॉक्टर श्रुति जी, मलेरिया के बारे में तो लोग अक्सर जानते हैं, लेकिन फाइलेरिया के बारे में मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, हम भी इससे परिचित नहीं हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया ये जो बीमारी है क्या है।
4: देखिए, ज़्यादातर फाइलेरिया हमारे क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है, और एक पैरासाइट है आपका वाउचेरिया ब्रोंकाइफाई, वो इसका पैरासाइट है जो ये मच्छर के अंदर होता है। ये जो इन्फेक्टेड मच्छर अगर किसी को बाइट करता है तो उसको फाइलेरिया हो जाता है। शुरू में तो ये नोटिस नहीं हो पाता है, कई सालों के बाद इसके लक्षण निकल के आते हैं। तो इनमें देखा जाता है कि लिम्फ नोड में हमारी स्वेलिंग हो जाती है, उनमें दर्द भी होता है, कई बार पेशेंट को बुखार भी आता है। लिम्फ नोड के अलावा उसके स्क्रोटम में या ब्रेस्ट में इस तरह की उसमें भी सूजन आ जाती है। तो अगर इस तरह के लक्षण किसी को दिखाई पड़ते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके वहाँ पर अपना टेस्ट करा सकता है, और डॉक्टर टेस्ट करेंगे। और इसका उसके बाद में अगर उनको इसका भी नाइट ब्लड सर्वे वगैरह होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में इस तरह के केस अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और ये है कि चूँकि NCR रीजन है और यहाँ पे बाहरी प्रदेशों से और बाहरी अन्य कई जिलों से जो है लोग आते रहते हैं, और जो जिले इनसे पीड़ित हैं अगर वहाँ से कोई व्यक्ति इस तरह का आता है और हमारे पास सूचना प्राप्त होती है, तत्काल हम एक्शन लेकर के और सारी हम उसकी रिपोर्ट्स देखते भी हैं और उससे सारी चीज़ें करने अगर हमें लगता है तो देन हम उसका मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं।
3: तो आपने बताया कि क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, अब बात आती है सावधानी की, तो हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, तो किस तरह की सावधानी हमारे समुदाय के लोग अपनाएं ताकि इन बीमारियों से वो दूर रहें।
4: देखिए, मच्छर कोई भी हो, चाहे वो एडीज हो या एनोफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, बचना तो हमें सबसे ही है, क्योंकि हर देखिए कोई ना कोई मच्छर किसी न किसी पैरासाइट को या वायरस को उसका वाहक है। और तो मेनली सबके उपाय सब कुछ सेम है कि हमें वाटर कहीं पे भी लॉक्ड करके नहीं रखना है, कंटेनर्स अगर कहीं पे भी हैं इस तरह के तो उनको हमेशा हमें खाली करके रखने हैं। कूलर है, फ्रिज है, जहाँ पे भी पानी है, मैंने अभी जो आपकी फ्रिज के पीछे की ट्रे होती है उसमें भी हमें पानी नहीं भरना है। दूसरा ये है कि आप हमेशा नेट का प्रयोग कीजिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, और अगर हम चाहे तो कई तरह के ऑइंटमेंट मार्केट्स में आते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ पैरों पे, जो हमारे खुला पार्ट रहता है हमारे हाथों का या पैरों का। तो मेनली ये है कि आप उनको करिए, नीम का तेल आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, अपने हाथों पे लगा सकते हैं, पैरों में लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हमेशा फुल बहा के आप अपना कमीज़ है खुद भी पहने और बच्चों को भी फुल स्लीव्स वगैरह पहना के रखें, क्योंकि अभी इस तरह का जो सीज़न है आपका जुलाई ऑनवर्ड्स नवंबर तक, तो ये रहता है कि यहाँ पे मॉस्किटो का थोड़ा डेंसिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम इस तरह के बचाव करते रहेंगे तो नियमित रूप से तो हम मच्छरों से बच सकते हैं।
3: बहुत से लोगों में कुछ मिथ भी है, कुछ लोग समझते हैं कि छुआछूत किया आनुवंशिक बीमारी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: हाँ जी, देखिए, ना तो ये आनुवंशिक बीमारी है और ना ये छुआछूत की बीमारी है। सिंपल सी बात है, अगर हमारा क्यूलेक्स बाइट करता है और जिसमें ये पैरासाइट अगर है उस मच्छर में, अगर उस मच्छर ने आपको काट लिया तो निश्चित रूप से फिर आप फाइलेरिया आपको हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह का लगे, और ये कई बार 5-6 साल के बाद में या कई बार 10-12 साल के बाद ये बीमारी डायग्नोस होकर आ पाती है, तो सबसे पहले आप जो भी ट्रीटमेंट आपको मिले, स्पेशली उन जिलों में हमारा जो है ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जहाँ पे आपको डाइएथाइल कार्बामेजाइन और आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल इस तरह के मेडिसिन उसमें दिए जाते हैं, वो प्रोग्राम में दिए जाते हैं कि भाई लोग उसे बहुतायत रूप में खाएं। और समुदाय में जो जहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें एक पूरे सभी लोगों को इस तरह का मेडिसिन खिलाया जाता है ताकि ये कंट्रोल में रहे। तो अगर आपको प्रारंभिक लक्षण उभर के आ रहे हैं, आप सही जगह पे पहुंचते हैं, आपका टेस्ट होता है, फिर आपको जो रिकमेंडेशन आपको मेडिसिन मिलती है उनका सही तरीके से सेवन कीजिए, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। तो इससे बचने का यही सिंपल उपाय है। दूसरा, कोशिश कीजिए कि मच्छर आपको बाइट ही ना कर पाए। हम हमेशा जब इस बात पर जोर देते हैं कि जो मैन और मॉस्किटो जो कॉन्टैक्ट है उसको ख़त्म किया जाए, तो अगर हम देखें मच्छरदानी लगाएंगे, फुल स्लीव्स पहनेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित रूप से मॉस्किटो से बच सकते हैं।
3: ये जो बीमारी है इसके लक्षण 5 साल बाद, कभी कभी 10 साल बाद इसके दिखाई देते हैं, तो इतने साल बाद अगर पता चलता है तो क्या ये ठीक हो सकती है बीमारी?
4: देखिए, अगर स्टार्टिंग में हमने उस बीमारी को पकड़ लिया, जब लक्षण आपके प्रकट हो गए, तो बिल्कुल ठीक हो सकती है। उसको हमें स्टेज 3 स्टेज 4 तक हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत दिन हो जाता है तब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आज ये बीमारी क्योरेबल है। अगर हमारा स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर हम उसे वो कर लेते हैं डायग्नोज करके भी, तो अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल जाता है तो निश्चित रूप से ये क्योरेबल है।
3: आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे क्या उपाय अपनाएं जिससे कि इस बीमारी से वो बच सकें।
4: देखिए, मॉस्किटो के बाइट का टाइम होता है, जैसे एडीज है आपका दिन में काटता है। आप वर्क प्लेस पे कहीं भी जा रहे हैं वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप घर पे भी हैं तो आपको वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। एनाफिलीज है आपका मॉर्निंग और इवनिंग में रहता है, ऐसे क्यूलेक्स का भी रहता है, क्यूलेक्स भी ज़्यादातर आपको इवनिंग और मॉर्निंग में ही काटता है। तो ऐसे समय पे हम थोड़ा अगर प्रिकॉशन लेंगे, और ख़ास करके जब आपका बरसात के बाद का जो सीज़न स्टार्ट होता है बरसात में, तो फिर वहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहने, ऑइंटमेंट लगा लें, बच्चों को भी हम ऑइंटमेंट लगा के रखें, तो हम उससे बच सकते हैं। और ये जान लीजिए, अगर आप अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे, आप अपने घर में सफाई रखेंगे, तो आपको मॉस्किटो इतनी जल्दी आपको बाइट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम इन सब चीज़ों को क्योर लेकर के चलेंगे, और अगर कभी मान लीजिए कहीं से हो भी जाता है, तो आप तुरंत का तुरंत, आपको उसमें देरी नहीं करनी है, आपको अगर पहले दिन बुखार आता है तो आप दूसरे तीसरे दिन ज़रूर आप पहुँचें और अपना टेस्ट करवाएँ।
3: डॉक्टर श्रुति कृति जी, आपने फाइलेरिया के बारे में हमको इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो समुदाय के लोग हैं आपकी जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, लेकिन अब सुनते हैं जमीनी सच्चाई हमारी आशा दीदी से। दीदी, आप तो घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, आपका अनुभव क्या कहता है?
5: मैं सीता संगनी धनकौर ब्लॉक से। वैसे तो हमारे जिले में फाइलेरिया बीमारी नहीं है, फिर भी हम समुदाय को जागरूक करने के लिए बताते हैं कि फाइलेरिया हाथी पांव एक धागे जैसे परजीवी कृमियों से होने वाला संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, और इसके लक्षणों में जैसे बुखार, सिरदर्द, खुजली, शरीर के अंगों में जैसे हाथ पैर या अंडकोश अत्यधिक सूजन शामिल हैं। अंगों में सूजन, हाथी पांव पैरों या हाथों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, जिससे वह हाथी के पांव की तरह मोटे हो जाते हैं। फाइलेरिया के बचाव के उपाय, मच्छरों से बचाव, जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, और मच्छरों के काटने से बचने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें और उचित देखभाल करें। यदि किसी को फाइलेरिया के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: अच्छा टीकन भाभी, फाइलेरिया पर बातें तो बहुत हुई, कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहती हो कि फाइलेरिया के बारे में, या यूं कहें कि विस्तार से अगर हम जाने तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप?
1: फाइलेरिया को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है नाइट ब्लड सर्वे।
0: अरे हाँ हाँ, ये तो मैंने भी कहीं सुना है, मैंने ये एक वर्कशॉप में भी सुना था।
1: अरे हाँ भाई, सुनो तो, अब लोग अक्सर पूछते हैं कि ये नाइट ब्लड सर्वे होता क्या है और रात में ही क्यों होता है। तो सुनिए, फाइलेरिया के कृमि को हम माइक्रो फाइलेरिया कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो संक्रमित मच्छर के काटने से हमारे खून में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड में दिन में ये छुपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये बड़ी संख्या में खून में सतह पर आ जाते हैं।
0: अच्छा, जब ही स्वास्थ्य कर्मी रात के समय ही सर्वे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रात में ये लोग निकलते हैं सर्वे करने के लिए।
1: हाँ, स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की उंगली में हल्की सी सुई चुभोकर कुछ बूंद खून निकालते हैं। उस खून को स्लाइड पर रखा जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि उस व्यक्ति के खून में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है या नहीं।
0: लेकिन टीकन भाभी, ये सर्वे करना जरूरी क्यों है?
1: देखिए, इससे हमें ये समझ आ जाता है कि गांव या मोहल्ले में बीमारी कितनी फैली हुई है, किन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है और किन जगहों पर बीमारी लगभग खत्म हो रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसी जानकारी के आधार पर तय करता है कि कहां दवा वितरण अभियान MDA को मजबूत करना है, कहां जागरूकता बढ़ानी है और कहां बीमारी खत्म करने की घोषणा की जा सकती है।
0: इसका फायदा क्या है भाई?
1: अगर समय पर बीमारी पकड़ में आ जाए तो दवा देकर उसे आगे फैलने से रोका जा सकता है। इससे गांव के बाकी लोगों की भी सुरक्षा होती है क्योंकि बीमारी का स्रोत कम हो जाता है। लंबे समय में यह सर्वे हमें फाइलेरिया की जड़ खत्म करने में मदद करता है। कहावत है ना कि समस्या को समझ लिया जाए तो उसका हल आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमें पता होता है कि बीमारी कहाँ है तभी हम उसे सही तरीके से खत्म कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और ये भी तो सही है कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, लेकिन समाज में लोग मरीज से दूरी बनाने लगते हैं।
1: बिल्कुल, बीमारी से पीड़ित को सहारे की जरूरत होती है लेकिन लोग दूरी बना लेते हैं। मेरा कहना है मरीज को अपनाइए, उनसे दूरी मत बनाइए।
0: क्या बात है, कितना जोर देकर भाभी आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही। तो दोस्तों अब वक्त है शपथ लेने का, आइए हम सब मिलकर कहें, यानी कि टीकन भाभी आप भी कहिएगा, हम भी कहेंगे और हमारे श्रोता भी कहेंगे,
6: हम अपने और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी लेंगे, साफ सफाई और मच्छरों से बचाव करेंगे, सरकार की दी हुई दवा जरूर खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: और याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। तब तक के लिए अलविदा और स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई अपने सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM पर। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति और हमारी टीकन भाभी को भी दीजिए अनुमति,
1: और ध्यान रखिए सब अपना।
0: नमस्कार।
7: फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था, हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी, अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है।
8: हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर ये एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है।
9: सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं, फाइलेरिया के कारण स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार MDA अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा निशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे, उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। MDA अभियान के दौरान हर साल ये दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलके रोकेंगे फाइलेरिया।
10: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: इसीलिए तो कहता हूं
1: यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो
0: बाकी

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभ

0: कामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आप तक सही सही जानकारी पहुंचे और उस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी खेती को उन्नत बनाएं और जो आपकी आमदनी है वो दुगनी चौगनी हो। इसीलिए सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है, बहुत सी योजनाओं का आप लाभ भी ले रहे होंगे। लेकिन किसान मित्रों, आप अधिक आमदनी चाहते हैं तो आपको खेती के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। जी हाँ, किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि आप मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ठीक से कर सकें और फिर आपकी अच्छी खासी आमदनी भी होती रहे। तो हमारे जो भी किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा वो कमा सकते हैं मधुमक्खी पालन करके। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे जो किसान भाई हैं वो स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक रागनी। कलाकार है प्रियंका चौधरी और किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से कृष्ण सुदामा के किस्से से ये रागनी। और आज हम बात कर रहे हैं खेत खलियान कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन की। बहुत सी बातें आपने मधुमक्खी पालन के बारे में सुनी, अब बात निकल के ये आती है कि इस काम की शुरुआत खेती के साथ साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही दिमाग में बात आती है कि काम की शुरुआत तो करें, लेकिन इसमें कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा। तो इसके लिए सरकार की जो ऋण योजना चल रही है उसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। यदि बात की जाए मधुमक्खी पालन पर आने वाले खर्चे की, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपका मुनाफा भी बढ़ने लगेगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल ही गया कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। 10-15 पेटी से इसकी शुरुआत की जा सकती है और जो खर्चा होता है शुरुआत में वो 35,000 से 40,000 के बीच में होता है। अब आपको बता दें कि सरकार की ऋण योजना भी चल रही है, तो उस योजना का लाभ उठा करके भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन काम की शुरुआत कैसे करें? कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब ये जानकारी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कहां से ली जाए? तो इसका सीधा रास्ता ये है कि आप अपने नजदीकी, जैसा कि हम हर कार्यक्रम में आपको बताते हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि केंद्र हैं, वहां जाकर के जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे बात करिएगा कि मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण आपके यहाँ पर कब कब दिया जाता है और कैसे हम इसमें भाग ले सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। और भी बहुत सारी जानकारी इस व्यवसाय से जुड़ी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मधुमक्खी पालन व्यवसाय की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: मेरा घड़ा तो थमा दे प्यारी। अच्छा? सारे

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र तारामती के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किसान मित्रों, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आपको पता ही है कि जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि जल का संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रेयर मशीन, इससे हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान मित्र कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। पानी बचाने के लिए भी किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना ही होगा। तो किसान मित्रों, आज के समय में जो सिंचाई की आधुनिक तकनीकी हैं, उनमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है और खेतों की सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचयन करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों की, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं।

बलराम बैसला द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-111-6666 पर संपर्क करें।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

आज उस कमर में बेनिफिशियर चूट गया। मेहरबानों तारा रोहतास की लाश के लिए कफन तो होती है, मेरे दोस्तों चौगिरदे कोई दिखाई नहीं दिया। आज ऐसी विपदा पड़ गई कि आज कमर के लिए

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंज से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9876 7893777. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए.

साथियों, काया में चक्कर से आने लगे और यम के दूत सत्यवान के प्राण लेने के लिए सामने खड़े हो गए। मेरे मेहरबानों, सावित्री के तप से जो सावित्री के मुखमंडल पर तेज था, उस दहकती ही ज्वाला से यम के दूत वापिस चले गए। मेहरबानों, सत्यवान को क्षण क्षण दर्द ज्यादा होने लगा। मेरे मेहरबानों, सत्यवान सावित्री की तरफ देख कर और ये कहने लगा, सावित्री आज मैं विधवा करके तुझे जा रहा हूं। एक दिन वो था सावित्री कि मैंने मना किया था, तेरे पिता ने और तेरी मां ने तुझे समझाया था और यहां तक कि मुनि नारद जी ने भी बताया था, लेकिन तैने मानी नहीं। मेहरबानों, किस तरह से सत्यवान फिर कहने लगा,

0: रे मनोज, कायम लटकाए बैठा हो, का बात होगी?
1: अब कहो बताओ भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसे कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
0: तो का हुआ, मिला ना? तो
1: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
0: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी को नाम कुछ और गेर दियो
1: ना। वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
0: तो का बात है
1: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
0: ए तो यार, इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
1: तो अभी वो ठीक ना होवे?
0: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरो टीको लगवा लिया हो पर प्रमाण पत्र में ना लिखो गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण ना लिखो गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कोई दूसरे नंबर को उपयोग करो गए हो, ये सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यू बस एक बार ठीक हो गए।
1: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकू करनी क्या होगी?
0: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ही ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वाके बाद कोविन के होम पेज पे ऊपर दाईं ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहां मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वह नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाईं ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा चाहिए। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो वाकू मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
1: रही रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
0: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा यूनिवर्सिटी इनवाइट्स यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI मीडिया एंड डेमोक्रेसी ऑन 12th जून 2026 इन ऑनलाइन मोड। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ओनली 250 रुपी। फॉर मोर अपडेट कॉल 8851 02300 और 9785014998। smfe.conference@sharda.ac.in। Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: माँ, मैंने कहा है ना, मुझे शादी नहीं करनी है माँ अभी। माँ, मैंने पहले ही आपको कहा है कि मुझे पहले अपने पैरों पर स्टैंड होने दीजिए, फिर शादी कर लूंगी ना।
1: तो क्या अभी तू सर केवल खड़ी है क्या? पांवों पे तो खड़ी है।
0: माँ माँ माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो?
1: क्या माँ माँ माँ, 26 साल की हो गई है तू? अरे तेरे साथ की सभी की शादी हो गई है, मेरे मरने के बाद शादी करेगी क्या?
0: माँ प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और ये इमोशनल अत्याचार मुझ पे मत किया करो माँ, मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ।
1: हाँ हाँ, अब मैं तेरी माँ जो तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ कि तुझे अत्याचार लग रहा है। जब भी शादी की बात करूँ हमेशा तू यही कहती है।
0: माँ

0: हाय दीपक।
1: हाय पायल, कैसी हो?
0: नहीं हूँ ठीक यार, परेशान हो गई हूँ।
1: क्यों, क्या परेशानी चल रही है?
0: यार माँ फिर से शादी के पीछे पड़ी हुई है, और तुझे तो पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं अपने पैर पे स्टैंड हो जाऊँ तो फिर मैं शादी के लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आती है।
1: अरे यार, सही तो कह रही है तेरी माँ, कब शादी होगी, फिर कब बच्चे होंगे। हम दोनों साथ में कॉलेज गए थे और हमारे सभी दोस्त की शादी हो गई है, पता है तुम्हें? अरे बताऊं किस किस की शादी हो गई है, नेहा, प्रीति, रीता, पल्लवी, देख ले मेरी भी तो शादी हो गई है ना, और एक ने एक दिन तो शादी करनी ही होगी यार। पायल
0: यार, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? ऐसा नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं करना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं करनी है, मुझे अभी अपना करियर बनाना है। चल ठीक है, मूड उदास कर दिया तूने मेरा, बाद में बात करूंगी तुझसे।
2: बस राधा, बहुत हो गया, बेटी हाथों से निकल रही है, इसके बाद कोई लड़का नहीं मिलेगा, तेरे साथ ही रहने वाली है क्या?
0: माँ, माँ मैं आ गई हूँ।
3: आ गई तो? तेरे अंकल का फोन आया था, क्यों सबसे मुझे बातें सुनाने को लगी है? 26 साल की हो गई और कब शादी होगी तेरी, और कब बच्चे होंगे? शादी और बच्चे में गैप होना जरूरी है, ये बात क्यों नहीं समझती तू? नहीं तो बाद में मुसीबत हो जाती है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा अच्छा और बुरा समझती हूँ, और अगर कोई है तेरी लाइफ में तो मुझे बता दे।
0: ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती।
3: बस तेरा फिर शुरू हो गया? ये लड़का देख, दीदी ने भेजा है, और कितना अच्छा लड़का है, और फैमिली भी अच्छी है, और अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए तुझे?
0: माँ आपको पता है ना इसको कैसी लड़की चाहिए, जो घर बैठकर इसके लिए रोटी बनाती रहे।
3: तो क्या हो गया, घर संभालना तो लड़की का काम होता है।
0: और मेरे काम का क्या, मेरे करियर का क्या? माँ आप क्यों नहीं समझती है, आपसे तो बात करना बेकार है। पता नहीं मैं क्यों बार बार आपके साथ बात करके टाइम वेस्ट करती हूँ, नहीं करनी है मुझे बात।
3: करियर, ये पता नहीं आज की लड़कियों को करियर करियर करने की क्या आदत हो गई है, पता नहीं कौन सी कंपनी की सीईओ बन जाएंगी जाके, बस करियर ही बनाना है, शादी वादी नहीं करनी है लड़कियों को।
0: क्या है माँ, शादी के टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करने नहीं आती आपको क्या?
3: ताना देने के अलावा कुछ नहीं आता तेरे को क्या?
0: माँ आप छोटी छोटी बातों पर क्यों नाराज हो जाती है, कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का।

0: माँ माँ माँ क्या हुआ है, क्यों नहीं बात कर रही हूँ मुझसे? मेरी प्यारी माँ,
1: छोड़ मुझे, पीछे हो जा।
0: माँ क्यों नाराज हो, मुझे थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं दे देते? शादी करने से सब ठीक नहीं होता, और आपको पता है शादी करके क्या, अगर वो भी पापा की तरह निकला तो मेरी जिंदगी आपकी तरह तबाह। आई एम सॉरी माँ, आपको बुरा लगा ना मेरी वजह से, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो माँ, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो।
1: नहीं तो ठीक कह रही है बेटा, मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो रही है, तेरे पापा तेरे पैदा होने पर मुझे छोड़ गए थे, इसकी वजह भी तो सिर्फ मैं ही हूँ। और हाँ, तभी तो तेरा शादी से विश्वास उठ गया है, तेरी बुआ शायद ठीक ही कहती है, मेरे पास्ट की सजा शायद तुझे मिल रही है।
0: नहीं माँ, जो आपके पास्ट में हुआ है उसकी गलती आपकी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। माँ आप नहीं समझती अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है।
1: हाँ बेटा, लेकिन तू जानती है ना कि शादी भी जिंदगी का एक हिस्सा होता है।
0: माँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट, मैं जानती हूँ आपने कितने एफर्ट्स के साथ मुझे बड़ा किया है और इस मुकाम तक पहुँचाया है, और माँ आप एक खुद औरत हैं, तो क्या आपको लगता है कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं? नानी ने आपको पराया धन कहा, और इसके बाद आज आप मुझे पराया धन कह रही हैं। कल को मैं किसी और के घर जाऊंगी तो वो भी तो मुझे पराया धन कहेंगे, तो फिर इनमें से मेरा घर कौन सा है माँ, एक औरत का घर कौन सा है, आप ही बताइए। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ माँ, अभी प्लीज आप इस बात को समझिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज।
1: हाँ रूपा, हाँ हाँ की है बात, पर देख यार मेरी बेटी कोई गाय बकरी तो नहीं है कि हर किसी के साथ बांध दूँ उसको। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपनी आशा बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे पता है आपको चिंता है, पर डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी, आप अपना घर संभालिए और मैं अपना संभालती हूँ।
0: थैंक यू सो मच माँ, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, आई लव यू।
1: मेरी लाडली बेटी, मैं अपनी बच्ची की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती, तुझे जो अच्छा लगता है तू वैसा कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

0: इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया रे झूमे से जैसे बन माता।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
1: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
0: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
1: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
0: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
1: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
0: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ,
2: दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: श्रोता संवाद। आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम के विशेष रेडियो संस्करण श्रोता संवाद में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उमंग कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। श्रोताओं, आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर राजेंद्र पाल। आप CIET NCERT में प्रोफेसर हैं और मीडिया निर्माण विभाग के अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका उमंग कार्यक्रम के विशेष रेडियो संस्करण में मैं श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: धन्यवाद अजीत जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक खास सवाल है, वो ये है कि हमें श्रोता संवाद कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसी भी संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है संवाद बनाए रखना। सबसे पहले मैं उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोता मित्रों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फोन और ईमेल के द्वारा हमसे लगातार संवाद बनाए रखा।
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि परस्पर संवाद संबंधों को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। श्रोताओं, उमंग प्रसारण में श्रोता संवाद प्रसारित करने का हमारा तात्पर्य है आपकी हमारी सीधी बात। कुछ आप कहें, कुछ हम कहें, कुछ आप पूछें और कुछ हम बताएं, कुछ हम पूछें और कुछ आप बताएं, है ना? क्योंकि हमें शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाने होते हैं तो कई बार संभव है कि आपका नाम रह जाए। तो श्रोता संवाद में हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन के प्रसारण में जो नाम रह जाते हैं उन्हें हम शामिल करें। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं श्रोताओं के पत्रों से।
2: बिल्कुल।
1: पहला पत्र हमें मिला है बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका पंजाब से। लिखने वाले हैं अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा। आप लिखते हैं, रेडियो के साथ उठते हैं, इसी के साथ सोते हैं, जब सुनते हैं नाम अपना तो बहुत खुश हम होते हैं। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो आपा जरा सा खोते हैं, हमारा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, हम रेडियो श्रोता हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कवितापूर्ण संदेश के लिए। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, कितना उत्साह है हमारे इन श्रोता मित्रों में।
2: जी, हम तो आपको यही कहना चाहेंगे, किसी उत्साह से सुनते रहिए हमारा उमंग कार्यक्रम।
1: जी,
2: और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को परिवार सहित यह कार्यक्रम सुनने के लिए जरूर प्रोत्साहित कीजिए।
1: जी हाँ,
2: हमें संदेश भेजकर यह भी बताइए कि हम अपने कार्यक्रम में और अधिक निखार कैसे ला सकते हैं।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी है और हम श्रोताओं से भी अनुरोध करेंगे कि अवश्य हमें बताएं और हम क्या करें कि हमारा कार्यक्रम और निखर कर आपके लिए प्रस्तुत हो। श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आपके लिए हम लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। इसमें होती हैं कहानियां, इसमें होते हैं नाटक, गीत, संगीत और भी बहुत कुछ। सर, अगला पत्र हमें मिला है करण बिंद का। आप महाराष्ट्र से हैं और आप लिखते हैं, मैं नवीं कक्षा का छात्र हूं और आपका उमंग कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूं। आजकल आपके कार्यक्रम में जो श्रृंखला समाचार पत्रों पर चल रही है मुझे काफी पसंद है। आपके सभी कार्यक्रम ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर होते हैं।
2: करण जी, पत्र भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यार्थी हैं, खूब मन लगाकर पढ़िए और उमंग कार्यक्रम भी सुनते रहिए।
1: बिल्कुल।
2: आपने लिखा है कि आपको हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम निवेदन करेंगे कि स्कूल में अपने सहपाठी मित्रों को भी उमंग कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए।
1: जी हाँ, आप जरूर बताएं अपने मित्रों को भी। डॉक्टर साहब, अगला पत्र हमें मिला है गांव निपनिया, तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं अश्विनी मिश्रा जी। आप लिखते हैं, आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को कार्यक्रम से बहुत प्रेरणा मिलती है और वह कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करता। मुझे महान रसायन शास्त्रज्ञ थॉमस एल्वा एडिसन पर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। ऐसी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमें जानकर अच्छा लगा कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और खास करके थॉमस एल्वा एडिसन पर आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी मिश्रा जी। अगला पत्र हमें मिला है ग्राम बंगला मटिया बालोद छत्तीसगढ़ से, शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे का। आप लिखते हैं, आपका रेडियो कार्यक्रम उमंग मन को उमंग से भर देता है। इसमें महत्वपूर्ण बातों और विषयों का समावेश किया जाता है। कार्यक्रमों में अजब गजब, महादेशों की जानकारी, संविधान में उल्लेखित भाषाओं की चर्चा, इन्हें जानिए आदि। और अब होनहार बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। भाषा विज्ञान, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसे विषयों की कठिन बातों को भी इतने सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि सुने बिना रहा नहीं जाता। तो शिक्षाप्रद सुरुचिपूर्ण प्रसारण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि हमारे कार्यक्रम न सिर्फ शिक्षाप्रद लेकिन मनोरंजक भी हों। इसी प्रकार संदेश भेजते रहिए, आपके संदेशों से हमें प्रेरणा मिलती है और मनोबल बढ़ता है।
1: डॉक्टर साहब, प्रतिदिन हमें ईमेल और फोन पर श्रोताओं के बहुत सारे संदेश मिलते हैं।
2: बिल्कुल,
1: हमारे पास पत्रों की भरमार है। कुछ और हमारे श्रोता मित्रों के नाम इस प्रकार से हैं। गुजरात से महादेव हरिभाई देसाई, दिल्ली से रेशमा और शकीला अंसारी, मेन रोड तेल्हारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, ठियोक शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, और डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का गजभिये और तन्मय गजभिये। साथ साथ हमें संदेश मिला है पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर का। डॉक्टर साहब, कुछ और संदेश हमारे पास
2: है? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए, सभी के नाम लेना आवश्यक है
1: जी, और हमारे श्रोता भी इसके द्वारा बहुत ही प्रोत्साहित अनुभव करेंगे। कुछ पत्र और हमारे पास हैं। सत्रोड खुर्द हिसार हरियाणा से पवन और प्रिंस, और साथ में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूजा पटेल। कुछ और पत्र हमारे पास आए हैं। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबू राम जयपाल, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या दिवांगन और हेमलता दिवांगन। और अंतिम संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब आपके लिए कुछ जरूरी बातें जो आपसे हम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य में बहुत से सुखद परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से एक है NCERT की नई पाठ्य पुस्तकें। हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि इन नई पाठ्य पुस्तकों में नवीनता क्या है।
2: जी अजीत जी, NCERT की पुस्तकें नई हैं तो उनमें बहुत कुछ नया भी है।
1: जी,
2: पहली बात, गुणवत्तापूर्ण छपाई और रंग बिरंगे आकर्षक चित्र। बच्चे इन पुस्तकों को जरूर पसंद करेंगे।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो है, मैंने भी इन पुस्तकों को व्यक्तिगत रूप से देखा है।
2: और दूसरी बात, इन नई पुस्तकों में दी गई रोचक कहानियाँ, चित्रों, उदाहरणों में भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। NCERT की नई पुस्तकों का उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, समस्या समाधान, समन्वय और सहयोग जैसे 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करना है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे मन में आता है, और वो ये है कि NCERT की नई पाठ्य पुस्तकें आज के या आधुनिक संदर्भ में कहाँ तक प्रासंगिक हैं?
2: अजीत जी, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन नई पुस्तकों की सामग्री और अवधारणाएं समसामयिक विषयों और आज समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक हैं।
1: जी,
2: ये विद्यार्थी केंद्रित हैं, पुस्तकें अत्यधिक रुचिकर और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए मित्रवत भी हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने और एक बात सुनी है, वो ये है कि ये पुस्तकें पुरानी पुस्तकों की तुलना में ज्यादा गतिविधि आधारित हैं। क्या ऐसा है?
2: जी, इन पुस्तकों में पाठ्य सामग्री के अलावा अभ्यास गतिविधियां भी दी गई हैं। इसलिए ये पुस्तकें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों के बारे में। आपको और एक खास बात बता दें, और वो ये है कि कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठवीं की हमारी नई पाठ्य पुस्तकें अब एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब पर ध्वनि पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध हैं।
2: जहां तक पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता का प्रश्न है, आपको हम सूचित करना चाहते हैं कि हाल ही में एनसीईआरटी ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ एक अनुबंध किया है, इसलिए अब आप यहाँ से भी अपनी पाठ्य पुस्तकें मंगा सकते हैं। ये पुस्तकें आपको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अविलंब मिल जाएंगी।

0: तो श्रोता मित्रों, सुना आपने, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अब NCERT की पुस्तकें मंगाने में आपको असुविधा और विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं एक विशेष जानकारी। श्रोता मित्रों, मनोदर्पण के बारे हम उमंग कार्यक्रम में अक्सर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं या अभिभावक हैं, विशेषकर यदि आप विद्यार्थी हैं और यदि आपको पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है, जैसे
1: कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, प्रश्न पूछने या परीक्षा देने में डर लगना, सहपाठियों के साथ किसी प्रकार की समस्या का होना या पढ़ाई में आत्मविश्वास का ना होना, पाठ को ठीक से याद नहीं कर पाना या अध्ययन को व्यवस्थित करने में समस्या का होना, जैसी किसी भी समस्या या किसी प्रकार की भावनात्मक समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं, तो NCERT द्वारा संचालित मनोदर्पण फोन इन मंच आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि इसके द्वारा आपको सुविधा मिलती है कि आप NCERT के शिक्षा और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों से फोन पर सीधी बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं और मनोपरामर्श ले सकते हैं।
0: जी,
1: आपको मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सारे परामर्श इस फोन की सेवा द्वारा मिल जाएंगे और आपको सचमुच इस फोन इन सेवा से लाभ होगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार से सहयोग भी एक वीडियो मंच है जिसमें आप विशेषज्ञों से सीधे जुड़ सकते हैं और उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सहयोग वीडियो परामर्श मंच में आप अपनी समस्याओं को भी स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। तो सहयोग और मनोदर्पण का हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिए, नंबर है 8448440632। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8448440632। और हाँ, उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ साथ आप हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लें। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और NCERT से संबंधित उपयोगी जानकारियों को साझा करने के लिए। तो अब अपने मित्र अजीत और प्रोफेसर राजेंद्र पाल को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और कार्यक्रम का शीर्षक है
2: तीन कछुए।
3: एक मर्तबा का जिक्र है कि तीन कछुए पानी में रहते रहते थक गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहां देवता रहते हैं, जहां हर वक्त शांति और सन्नाटा रहता है, जहां समंदर जैसे तूफान नहीं आते। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ अपने खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफर बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए जरा रेंग कर भी तो चलते हैं। मगर ये तो आप जानते हैं कि कछुए बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं। आपने सुना होगा कि एक बार एक कछुए ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से एक खरगोश को दौड़ में हरा दिया था और लोगों को ये सबक दिया था कि आदमी भी चाहे तो मुस्तकिल मिजाजी से अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये तीनों ही कछुए पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते रहे, चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन वो कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिलाखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए, जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। उनको यहां पहुंचते पहुंचते 20 साल गुजर गए थे। इतने दिन के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि यहां कुछ दिन आराम करें और इस शांति के स्थान का कुछ मजा लूटें। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। हवा भी हल्के हल्के चल रही थी। यूं तो सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए की खाल इतनी मोटी और इतनी सख्त होती है कि फौलाद ही इसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए इसमें

उनकी आदत तो समंदर का पानी पीने की थी, उससे ही उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए।

0: उनकी कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा कछुआ बोला,
1: मंझले कछुए, तुम जाओ और समंदर से जाकर पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे।
0: मझला कछुआ बोला,
2: मेरी तो राय ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए, वो इस वक्त भी खासा चुस्त तो चालाक मालूम होता है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ।
0: छोटे कछुए ने बहुत आना कानी की, मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए। और उसकी एक ना चली। आखिर मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला,
1: मैं चला तो जाऊं, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे, और जब मैं आऊंगा तो उस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा तो वो भी झूठा होगा।
0: दोनों कछुओं ने कहा,
1: अरे ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।
0: छोटा कछुआ संजीदगी से बोला,
3: जी हाँ जरूर करोगे,
1: मुझे तो यकीन है कि तुम हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे।
0: मगर दोनों कछुओं ने बड़ी खुशामद की। और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम न आओगे हम खाने में हाथ न डालेंगे। आखिरकार मजबूर होकर छोटा कछुआ चला गया। अब बाकी दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, यहां तक के 100 साल गुजरे। 100 साल गुजर गए मगर छोटे कछुए को न आना था न आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उन दोनों को यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आ जाता। उन्होंने सोचा कि
1: अब ज्यादा इंतजार करना

0: करने से कोई फायदा नहीं।
1: अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता।
2: आखिर भूख से बेकाबू होकर उन दोनों कछुओं ने खाने में हाथ डाला। अभी उन्होंने खाना खाया भी न था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला,
3: मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं था। यही बैठा हुआ देख रहा था।
2: दोनों कछुए भौचक्का रह गए। लेकिन कहते तो क्या कहते।
4: तीन कछुए।
5: तो इस लोक कथा के बाद अब आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा समय यहीं समाप्त होता है। तो अजीत
6: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878 93770. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है, जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नाम तो सुना ही होगा।
0: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इससे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसी मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं, वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
0: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8 FM@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.

0: सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट शारदा यूनिवर्सिटी इनवाइट्स यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI मीडिया एंड डेमोक्रेसी ऑन 12th जून 2026 इन ऑनलाइन मोड। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ओनली 250 रुपी। फॉर मोर अपडेट कॉल 8851 02300 और 9785014998 smfe.conference@sharda.ac.in। Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University. राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं एक खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट। और इसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम को नाम दिया है राब्ता, यानी कि हम एक खास मेहमान से राब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो अपने एक सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ती हैं। जहां आप काम कर रहे होते हैं किसी भी संस्थान में, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं बड़ा खुशनुमा माहौल रहे। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो सच बात तो यह है कि एक कमेटी होती है और कमेटी से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। वो कमेटी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ रही हैं। आप हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर एकता चौधरी। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मिस्टर गगन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जो हमने जिक्र किया ICC, ये है क्या?
1: इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई गई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत, जो कि 2013 में लागू हुआ था, जिसको हम सब पॉश या GS कैश के नाम से भी जानते हैं। फिर 2017 में द नेम वाज फॉर्मुलेटेड एंड गिवन एज ICC, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसका जो मेन एजेंडा है वो है प्रोवाइड सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल एंड फेयर सिस्टम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड इश्यूज एट वर्कप्लेस को हैंडल करे।
0: जी सोलिसिटर्स, मैं समझता हूँ कि इस बात को आप जान गए हैं, समझ गए हैं। हर कोई यही चाहता है कि अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको आपके राइट्स पता होना बहुत जरूरी है कि अगर परेशानी है तो इस परेशानी का हल कहाँ हो सकता है, किसके पास जाकर हो सकता है, क्या कोई इस तरीके की बॉडी बनी हुई है जहां हम अपनी बात रख पाए, कह पाए। तो मैम ने इसके बारे में अपनी बात रख दी। तो मैम जब आगे बढ़ता हूँ तो बात निकल कर ये सामने आती है कि ये जो कमेटी है किस तरीके से काम करती है।
1: जो ICC कमेटी है इसमें जैसे कि पहले बताया हम मैंने कि इट वर्क्स ऑन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ एनी कम्प्लेन। सो तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हु इज अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉय, और एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं जो फैकल्टी टीचिंग मेंबर्स होते हैं, दो नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि किसी NGO से या जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फीमेल की लिए काम करता हो। और इसमें फिर तीन स्टूडेंट मेंबर्स भी होते हैं जिसमें कि एक ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है और एक रिसर्च स्कॉलर होता है।
0: जब आप स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जो बायोडाटा है तो वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि लॉ के ही होना जरूरी है या स्कूल ऑफ मीडिया के होना जरूरी है या डेंटल का होना जरूरी है या किसी भी फील्ड से आ सकते हैं?
1: नहीं, स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, पर उनका एक झुकाव और एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम करना या कुछ अपना योगदान देना चाहें। उस तरीके से हम स्टूडेंट का
0: इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ कम्युनिटी कनेक्ट के प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ी हुई हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी, जो कि इस फील्ड की जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं। और ये किस तरीके से काम करती है ये कमेटी, इसके बारे में हम मैम से जान रहे हैं। तो मैम, ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि ये कमेटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। आपने हमें बताया कि इसमें कई लोग जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के साथ आप आते हैं। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या यूँ कहें कि अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई उनका इंटरेस्ट होता है या नहीं होता।
1: स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, पर यूजुअली जो केसेस हम सोच समझ के स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट का कोई कंप्लेन आती है तो हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं। पर यदि अगर कोई सीनियर फैकल्टी की या फैकल्टी हो तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रखा जाए। क्योंकि उसमें उस केस में ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिसमें कि चीज़ें कई बार गलत साबित होती हैं। उस केस में हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। पर अदरवाइज वो किसी भी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो और जिस जो कमिटेड हो वुमेन्स राइट के लिए हेल्प करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को हम एनरोल करते हैं।
0: यानी कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी झूठी बातें भी आपके सामने आती होंगी, तो उस समय आप कैसे उसको समझ पाती हैं कि ये गलत बात है, इसको हम यहाँ रोक सकते हैं, आपने झूठी बात रखी है। या कभी कभी कोई रिटर्न में आ जाती है, जैसे आप ऑफिस हमें बता रही थी कि अगर बात आगे तक बढ़ जाती तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का हो जाता है, एचआर होता है, आपका एक अलग भूमिका होती है, कभी कभी पुलिस या लॉ के अधिकारी भी जुड़ जाते हैं। तो वो क्या सीन होता है, किस तरीके से कंप्लेंट को आप लोग लेते हैं, हैंडल करते हैं?
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गगन जी, ये बहुत ही आम सी बात है। ऐसे किस को बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे को एक बार पहली बार में समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली किस तरीके से और कहाँ तक कंप्लेंट ले जाना चाहता है। तो एक इसमें आईसीसी में एक है गाइडलाइंस में कि देर इज अ वे टू फॉर कंसिलिएशन ऑल्सो। तो उस केस में हम स्क्रीनिंग कमिटी बनाते हैं पहले और दोनों पार्टीज को सुनते हैं, द कंप्लेनेंट एज वेल एज द रेस्ट्रेंट। तो उसमें ये होता है कि अगर हमें लगता है कि दोनों पार्टी आपस में सुलह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कई बार उनको समझ आ जाता है हमारी बात से ही या समझाने से, और उनको आपस में भी लगता है कि हमें आगे फर्दर कंप्लेन को बढ़ाने की या उस चीज को ले जाने की जरूरत नहीं है इतने सीरियस नोट पे, तो वो कंसीलिएशन के थ्रू उस कंप्लेन को वहीं की वहीं हम खत्म भी कर सकते हैं। पर अगर मैटर बहुत सीरियस होता है और हमें खुद लगता है तो हम उसको फिर आगे स्टेज ले जाते हैं।
0: ये तो रही एक बात, दूसरे पहलू को अगर मैं जानूं तो क्या आपने लोगों को दोस्त बनते हुए देखा है, अरे यार मैं नादान था, गलती कर गया, किसी ने मुझे उकसा दिया इस बात के लिए तो ये कंप्लेंट मैं लेकर आ गया या दर्ज करा दी?
1: हाँ, ऐसा भी होता है। पर क्योंकि ये एक्चुअली केसेस जो होते हैं आईसीसी में सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ही आते हैं, तो उस केस में ये है कि हम बहुत किसी भी चीज को ना नजरअंदाज या आप कहें कि हम उसको सीरियसली ना लें वो नहीं हो पाता। पर कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि बच्चे नादानी में थोड़ा सा चीज को सीरियस नोट पे ले जाके उसको बढ़ावा देने के लिए या किसी को डराना भी हो थोड़ा बहुत तो आके कंप्लेन कर देते हैं। पर उस केस में हमारी कोशिश यही रहती है कि फिर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा समझाया जाए और बताया जाए कि ऐसे चीजें ना ले जाके आप उसको ठीक नोट पे भी एंड कर सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत। सोलिसिटर्स कहने का मतलब ये है कि इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एकता चौधरी से, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं आईसीसी कमेटी शारदा विश्वविद्यालय से, और बहुत बड़े अनुभव के साथ मैम आती हैं और किस तरीके से ये कमेटी काम करती है, तो ये जानना समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातों का जो सिलसिला है लगातार हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो समुदाय की बातें होती हैं, आपकी बातें, हमारी बातें, और हर एक सब्जेक्ट पर हम यहां से बातें कर रहे होते हैं। आज ज्ञान विज्ञान की बातों के अलावा, पढ़ने पढ़ाने की बातों के अलावा, जिस सब्जेक्ट को हमने चुना है कॉलेज के समय में, ये जानना समझना बहुत जरूरी है जहां आप काम कर रहे हैं कि एक महिला के अधिकार क्या हैं। जब आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को आगे लेकर जा पाते हैं और उसके बाद एक खुशनुमा माहौल आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और अच्छा माहौल यहाँ है, और यही वजह है कि दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि अपनी बात को हम आगे लेकर कहां जाएं। उस समय एक कमेटी काम करती है जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उसकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी मैम। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रूपरेखा बनानी पड़ती, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो क्या बात है, वो क्या आधार है जिसकी वजह से कंप्लेंट आपके सामने आती है। जैसे कि अमूमन मैं समझना चाहूंगा आपसे, या तो मैं ऊंचा सुर आपको लगा गया, या मैंने आपकी शान में और कुछ गुस्ताखी कर दी, या कुछ और। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो कंप्लेंट कौन कौन सी हो सकती है, ताकि जो लिसनर्स हैं वो अलर्ट रहें, स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहें, या एक एम्प्लॉय भी अलर्ट रहे।
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है गगन जी, इससे क्योंकि लोगों को कई बार बहुत चीजों को लेके गलत फहमी होती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत या ICC के अंदर एक्चुअली क्या चीजें आती हैं जिसपे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना, सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट को ही नहीं माना जाता है कि आपने फिजिकली किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में आएगा, नहीं। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अनवेलकम कोई फिजिकल एडवांसमेंट भी दिखाते हैं, या कोई रिक्वेस्ट, या कोई एक्स्ट्रा फेवर्स भी किसी से मांगते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और पासिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स,
0: जी,
1: आप अगर किसी को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी करते हैं, पीछे से कमेंट मार रहे हैं, या पीछे से उसको अनवेलकम जेस्चर दे रहे हैं, या इशारों में भी कुछ बोल रहे हैं, कोई आपका कैसा भी अनवेलकम कंडक्ट जो दूसरे किसी को अच्छा ना लगे, फीमेल्स उसको ना पॉजिटिवली लें, आपका चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या फिजिकल हो, जिसको कि वो ठीक ना उनको लगे, उनको अनकम्फर्टेबल महसूस कराए, तो जिसकी वजह से आपका काम सफर कर रहा हो, या फीमेल को लगे कि वो डिस्टर्ब हो गई हैं, या अपनी वर्क प्लेस पे वो कंफर्टेबल सेफ ना फील करें, तो ये सब चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आती हैं।
0: मैम एक बात बताइए, मैं इसे अलग हटकर बात कर रहा हूँ और लाइट नोट पर बात करना चाहूंगा, फिर तो मुझे लगता है कि अरे मैम आगे जैसे होता है ना कि टीचर आता है, कोई प्रोफेसर आता है, कुछ तो दोस्त आपके बहुत ज्यादा होंगे या बहुत ही लिमिटेड होंगे, कैसा है आपका अनुभव?
1: नहीं बहुत पॉजिटिवली लेते हैं हमारे लिए काम जरूर ऐसा है, पर हम चीजों को, इट्स नॉट दैट, एक होता है ना, हम वी ट्राई टू पैसिफाई, इट्स नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग। कुछ चीजें होती है, हमें पता है, आजकल की तो आप नॉर्मल टोन में भी आप देखेंगे बच्चों की आम भाषा ही यही हो गई है।
0: मैम ये तो आपने बहुत,
1: हम अगर हर चीज को अगर इसमें करने, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर हम अब्यूजिव लैंग्वेज को देखें तो बच्चे आजकल आपस में नॉर्मल टोन में ही इसी भाषा में बात करते,
0: जबकि बहुत गलत है।
1: हाँ।
0: क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश करते हैं कि किस माहौल से आप आते हैं, किस परिवेश में आप रहते हैं, या किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है। एक इशारा भी है कि आप गाली गलौज से अपने आप को दूर रखिए। निश्चित तौर पर आप नहीं चाहते कि आपके सामने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, आप नहीं चाहते कि आपके परिवार, जहां आपकी माँ हो, बहन हो, उनके सामने कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। सो प्लीज आप अपने बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं, तो ऐसी जब खुशनुमा माहौल आप दूसरों को देंगे तो मैं समझता हूं कि एक खुशनुमा माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे, और उसके बाद आपकी भी एक पहचान बनती है। विकसित भारत जब हमें बनाना है तो उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, एक युवा का योगदान बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो दिल की गहराइयों से मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC के बारे में हम बातें कर रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा विश्वविद्यालय से। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम। मेरे यानी गगन के साथ राबता है, राबता हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ी हुई हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका नाम है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा यूनिवर्सिटी से। मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: इस कमेटी से हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की बातें हो रही हैं, एक लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। क्या एक पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उसके भी कुछ राइट्स हैं? वो कैसे अपने आप को बचाव कर पाए कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कभी कभी झूठे केसेस भी आपके सामने आ जाते होंगे, तो मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो किस तरीके से, अगर मतलब बात वही आ रही है कि कंप्लेंट को आगे लेकर जाए और अगर झूठा केस आ रहा है तो कैसे उस वक्त आप जजमेंट कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है?
2: एकदम सही बात है गगन जी। इस केस को जैसे आपने बताया है कि कभी कभी गलत कंप्लेंट्स भी आती हैं, उसके ऊपर भी लॉ है। इट्स नॉट दैट कि मेल्स डोंट हैव एनी राइट। आदमियों के लिए भी होता है कि कई बार अगर किसी ने गलत कंप्लेंट कर दी है और अगर बिल्कुल प्रूफ्स के साथ एंड इट इज प्रूवन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रूफ करना, क्योंकि इस केस में सारे जो फैक्ट्स हैं या प्रूफ्स हैं वो रेस्ट्रेंट पार्टी को देनी पड़ता है। पर अगर ऐसा कुछ लगता है कि गलत कंप्लेन आई है एंड वी फाइंड ऑल गेट ऑल द प्रूफ, तो उस केस में वी कैन ऑलवेज हैव अ पनिशमेंट फॉर अ कंप्लेनेंट एज वेल। सो इट गोज एज अ
1: जो शिकायत कर रहा है, अगर उसका गलत पाएगी तो उसको दंड का अधिकारी है।
2: इट्स अ मैलफिस कंप्लेन, सो इट गोज एज अ फॉल्स एलिगेशन।
1: यस,
2: तो वो उस केस में फिर हम दूसरी पार्टी को भी कर सकते हैं
1: पनिशमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। इससे पहले जो बात यही आती है कि मैं अपनी कंप्लेंट को कैसे दर्ज करूं, और साथ ही साथ मैं अब ये समझना चाहूंगा कि ये तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई फैकल्टी है तो उसके भी ये राइट्स उसी ICC में ही आते हैं?
2: एकदम बिल्कुल, फैकल्टी के और स्टूडेंट्स के, कोई भी जो भी फीमेल स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी फीमेल उस वर्क प्लेस के अंदर है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो और कोई भी स्टूडेंट हो, सब ICC के।
1: मैम, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, मैं बहुत अलर्ट रहने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि आप लोगों को देखेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में आप बोलेंगे, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि नहीं बेटा गगन, अलर्ट हो जाना, पता नहीं कब कौन कोई बात को दिल पे लेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन खैर, ये आपको आना चाहिए कि कला है कि आप कब कहाँ कैसे बात कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं आता तो आप सीखिए समझिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएंगे। और सच बात तो ये कि आप इज्जत चाहते हैं अपनी फैमिली की, फिर से मैं वही शब्दों को दोहराऊंगा, तो जब आप इज्जत सम्मान दूसरी महिलाओं को आप देंगे, अपने कुलीग को देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर वही बात कि खुशनुमा माहौल आप बनाकर रख पाएंगे। तो मैम, आपकी पसंद का कोई गाना हो जो आप सुनना चाहती हो, सुनाना चाहती हो हमारे लिसनर्स को, क्योंकि बहुत एक गंभीर विषय है लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हम इसको आगे लेकर चले, तो कोई गाना जो आप सुनना या सुनाना चाहती हो?
2: अपने आप से प्ले,
1: आप अपने आप से। चलिए, मुस्कुराहट भरा एक खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। सच बात तो ये कि मुस्कुराने की वजह आप यानी कि हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि आपको देखकर ही हमें एक एनर्जी मिलती है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं और राब्ता इस प्रोग्राम का नाम है। हमारे साथ जुड़ी हुई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC की प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी से। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज वर्कशॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए और रेडियो वार्ता के माध्यम से स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, सभी को अलर्ट करता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो कहां हम जाएं, कैसे अपने ऑफिसर से हम मिलें, कैसे अपनी बात को हम उन तक लेकर जाएं और कैसे कभी कभी ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करें। तो इसी संबंध में मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपसे कोई कनेक्ट करे, कंप्लेंट दर्ज करे, या आपका ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर या आपका ऑफिस नंबर कौन सा ब्लॉक है जहां आप लोग, ये हमारा ऑफिस है।
1: अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को जरूरत पड़ती है बाय चांस कभी हमारे पास आने की या कंप्लेन करने की, तो इसके कुछ है कि अगर आपको लगता है आप स्कूल लेवल पे पहले अपने हेड को बोल सकते हैं
0: जी,
1: या आप हॉस्टल लेवल पे वार्डन्स को बोल सकते हैं और उनको लगता है कि वो हमारे को फॉरवर्ड कर दें अगर कंप्लेन सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है तो वो हमारे पास पहुंच जाती है। या फिर जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्टली ICC को भी आके कंप्लेन कर सकता
0: है। ओके।
1: तो ये कंप्लेन जो है किसी भी इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, 3 महीने पहले तक इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर विद इन 3 मंथ्स कंप्लेन कर सकते हैं। पर उसके में भी है आपके पास कि अगर आप इनकेस नहीं भी कर पाते हैं और उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आफ्टर लुकिंग आफ्टर द फैक्ट एंड अ वैलिड रीजन दिस डेडलाइन ऑल्सो कैन बी एक्सटेंडेड। तो आप 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं अगर ICC कमेटी को लगता है कि नहीं बहुत वैलिड रीजन है आपका
0: जी,
1: तो आप उसके बाद भी हम कंप्लेन ले लेते हैं। फिर ICC अपने लेवल पे इंक्वायरी करती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी में उनको लगता है कि कंसीलिएशन या कुछ बातचीत से बात हो सकती है तो हम उस तरीके से उसको लेके जाते हैं। अगर मैटर बहुत ज्यादा है, सीरियस है, और फिर हम पूरी इंक्वायरी कमेटी, पूरी ICC की कमेटी बैठती है, देन फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट होती है। फिर उसके बाद हम अपनी जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं या आफ्टर द फाइनल इंक्वायरी देन इट गोज टू द VC ऑफिस फॉर द अप्रूवल।
0: ओके।
1: देन आफ्टर द रिकमेंडेशन देन द पनिशमेंट इज डिसाइडेड ऑन दोज रिकमेंडेशंस एंड देन द ऑफिस ऑर्डर्स आर इशूड फ्रॉम द हायर अथॉरिटी।
0: इस प्रोसेस को कितना समय लग जाता है मैम?
1: वी एक्चुअली हैव अ डेडलाइन ऑफ 90 डेज। हमें किसी भी इंक्वायरी को करने के लिए वैसे 90 डेज होते हैं, बट वी ट्राई टू काइंड ऑफ गिव जस्टिस या हम किसी भी एक नतीजे पे कोशिश करते हैं कि हम 15 से 20 दिन में आ जाएं।
0: Okay.
1: थोड़ा सा ताकि, और इस अगर कुछ ज्यादा होता है तो उस बीच में हम एक रेस्ट्रेन ऑर्डर सा इशू कर देते हैं जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसके लिए।
0: क्या कभी ऐसा होता है कि, या ये एक प्रावधान है कि कोई चाहता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो रिवील ना हो, ऐसा होता है?
1: ICC के जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी ऐसा कुछ होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है। कभी भी किसी कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी अपनी ICC की तरफ से कभी भी रिवील नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं जाती। हम जब कभी भी कंप्लेन भी भेजते हैं या UGC में जब हम डेटा भी भेजते हैं तो उसमें भी सारा मास्ट होता है। कंप्लेनेंट का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम कहीं जिक्र नहीं होता, इट इज ओनली द ऑर्डर नंबर या केस नंबर के नाम से। तो इट इज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल।
0: ठीक है मैम, कोई ईमेल आईडी जो आप यहाँ जिक्र करना चाहें, कोई ब्लॉक जहाँ ये ऑफिस है?
1: ICC पे अगर कंप्लेन आप डायरेक्ट डालते हैं, वैसे शारदा यूनिवर्सिटी में ग्रीवेंस पोर्टल है, एक ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर भी ICC प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। नहीं तो ICC की एक मेल है icc@sharda.ac.in, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप उसमें भी भेज सकते हैं।
0: ठीक है,
1: जिसमें मोस्टली वही उसी के थ्रू ज्यादा आती है। और फिर जो इसका ऑफिस है, अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस है ICC का, दैट्स इन डेंटल बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 5।
0: ग्रेट। फाइनली मैम, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, बहुत सारे केसेस आप देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं, तो मैं फाइनली एक संदेश आपसे लेना चाहता हूं अपने लिसनर्स के लिए। एक तरफ तो ये काम हो रहा होता है और जो मोरल बातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोग याद रखें, तो एक मैसेज क्या होगा कि किस तरीके से ये कंप्लेंट्स कम हों, यहाँ तक लोग ना पहुँचें, हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो लिसनर्स नो डाउट कि आपको पहुंचने की बहुत जरूरत है। मेरा मानना तो ये है कि ये बातें हम जानते हैं, समझते हैं कि बड़ों का अदब करिए, अपने साथी का ख्याल रखिए, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करिए, और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली का एक सम्मान रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो मैं समझता हूँ कि नेचर भी आपके साथ कहीं कुछ गलत होने नहीं देगी। ये मेरा मानना सोचना है। तो मैम फाइनली आपकी तरफ से क्या मैसेज आता है?
1: एक्चुअली देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। इट इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। अगर हम सब मिलके इस चीज को समझेंगे तो कहीं पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इस तरीके से आएंगी ही नहीं। अगर हम आपस में ही जो एक जेंडर कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको अगर हम फिल कर पाए वो बहुत जरूरी है। आप हम सोचें कि सब लोगों से हम अपनी तरीके से ही बात कर सकेंगे, सेम जेंडर हमारी चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, वो गलत है। अगर हम एक लेवल पे आके उनको भी समझें और उनके तरीके से बात रखें, जैसे कि सीनियर जूनियर एम्प्लॉयज में बहुत होता है।
0: जी जी,
1: सीनियर एम्प्लॉय है, जूनियर है, फीमेल्स प्रॉब्ली अगर आप थोड़ा सा शाउट करते हैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं। तो अगर आप वो एक जेंडर गैप को समझेंगे ना, तो आप उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे। और जब एक चीज, ये चीज आपको आ जाएगी, बिकॉज हर चीज, हर तरीके का कम्युनिकेशन सेम नहीं हो सकता। मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, फीमेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। तो वो थोड़ा सा वो चीज को हम वर्क प्लेस में अगर अपना ले आए तो ये यहाँ पे खत्म।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि लिसनर्स, मैंने एक इशारा कर दिया है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ हम वर्कशॉप रखने वाले हैं मैम, और आप जरूर रखिएगा वर्कशॉप, और थैंक्स मुझे जरूर बोलेगा। गगन ने मुझे ये इशारा कर दिया कि जल्दी इस पर हम वर्कशॉप करेंगे ही करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं बात करने से, बात बनती है। मैम का इशारा यही है कि जो कहीं गैप आ रहा है, और आप अपने साथी को जानिए, समझिए उसे क्या अच्छा लगता है। जैसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना कि मेरा वो दोस्त है वो ये खाता है ये पीता है, उसको छोटी छोटी बातें अच्छी लगती है, छोटी छोटी बात पर वो नाराज हो जाता है, खफा हो जाता है, पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। वक्त का इशारा मुझे कह रहा है कि मैं आपसे अनुमति लूं, तो बस यही कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और मेरा फंडा यही है, अगर मैं इस बात का एक समअप करूं या निष्कर्ष निकालूं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, ये मेरा मंत्र है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग टेंशन कहते हैं ना कि लेने का नहीं देने का, नहीं, हम कहते हैं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, आप थी हमारे साथ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप ICC से, डॉक्टर एकता चौधरी। ये वार्ता, ये टॉक आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि शारदा यूनिवर्सिटी के रेडियो FM जाना है तो मुलाकात कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं हो रहा हूं 9:11, अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, नमस्कार, थैंक यू।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: Sharda School of Media, Film and Entertainment. Sharda University invites you to the International Conference on AI, Media and Democracy on 12th June 2026 in online mode. Registration start only 250 rupees. For more update, call 8851-02300 or 9785014998. smfe.conference@sharda.ac.in. Hariya, where are you? The wall is here at Sharda University.
2: बाबू क्या हुआ?
3: हम रोज 29 की रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है।
2: हाँ?
3: हाँ?
2: मतलब
3: हमारी 30 नहीं आ रही है तितली।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज

और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
2: केको डाइट का नाम सुना? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
3: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जा।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, शारदा यूनिवर्सिटी इनवाइट्स यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI, मीडिया एंड डेमोक्रेसी ऑन 12th जून 2026 इन ऑनलाइन मोड। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ओनली 250 रुपी। फॉर मोर अपडेट कॉल 8851102300 और 9785014998smfe.conference@sharda.ac.in। हरिया, वेयर आर यू? द वॉल इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: mixing in the house.
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: अरे भैया रामू।
3: हाँ भैया श्यामू।
2: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
3: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
2: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
3: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
2: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओके रा के तुरंत साफ करी, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जम...

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878 93770. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता

महसूस हो रही है तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
1: एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाए। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
3: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
3: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
4: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

0: दिमागी बुखार से बची तो बेगम।
1: बस अमली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: सुनो

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है, जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और ये

0: अनाज की, किनुआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
2: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
3: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं।

0: हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है। इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है, है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: ताजा खबर, कमला के घर में 4 औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
3: नमस्ते आशा दीदी,
2: सब ठीक बा?
3: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रही नी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
4: और आस पास कहूँ भी टायर नरी

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।